0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डी।

वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप सुन रहे हो मेरे साथ कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है राधा शर्मा जी की। राधा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
3: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम.
0: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है मैम आपका?
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं मैम. मोनिका
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? मोनिका मैम,
1: मैडम आज आपको दे रहे हैं हम ये गाना, प्यार हमें, प्यार हमें कितना करते हो.
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना.
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग. 89.6 पे रेडियो डीएफ.

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम अमन गुजर है।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: मैं रेलवे कॉलोनी गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी मैं विक्रम सरकार का गाड़ी 150 सुनना चाहूँगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

और दोस्तों वक्त हो चुका है 10:15 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या आपका? कहाँ की बात कर रहे
0: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दुनिया तेरी याद आई है।
1: कैसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: राम सिंह है मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल की ये आरजू थी।
0: तो कैसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश?

0: हेलो।
1: हाँ जी, तो नमस्ते।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैं?
1: धन्यवाद सर। नाम क्या है आपका?
0: रूपचंद गोयल, बाड़मेर राजस्थान।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज जो गीत सुना है, पिक्चर का नाम है अदालत और गीत के बोल है तुमसे दूर रह के जाना प्यार क्या है।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो टू एफएम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक
1: यू, वेलकम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: कैसे हो सर?
1: ठीक है भाई बेटा, बढ़िया। तुसी दसो भाई, छोटी से ठीक है जी?
0: हाँ जी सर, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। और कैसी है पंजाब में गर्मी?
1: बेटा साढ़े पंजाब वेदर 47 ना
0: सर, यहाँ पर 35 चल रहा है इस टाइम।
1: अच्छा भाई, हम कहते हैं भाई अपने रेडियो वीरा भेड़ा कहने भी बारिश आ जूगी थोड़े चेर बाद।
0: नहीं, आज दोबारा उनकी मीटिंग है, बाहर गए।
1: अच्छा ते
0: क्या बाहर का ज्यादा रहता है जो काम?
1: अच्छा ते भाई तुसी आपकी सेहत का ख्याल रखियो, पानी धानी बद पिया करो, गर्मी बहुत ज्यादा। ठीक है
0: गर्मी बहुत तेज है, आप भी ध्यान रखे करो। सुबह 10 बजे से पहले पहले जो भी बाहर का काम है वो आप कर लिया करो, उसके बाद बाहर मत जाया करो 3 बजे तक। तो
1: भाई की करके साडे दा पिंड वाला काम भाई थोनू पती है, साडा दा दिन रात दी काम हुंदा भाई की करके।
0: हाँ जी पर बहुत और, गर्मी भी बहुत तेज है इस टाइम तो।
1: और भाई याद है यार ते होर भाई अपने मीना सर नु भी सत श्री अकाल बुला देना भाई मेरी।
0: हाँ जी जरूर बोलूंगी मैं सर को सत श्री अकाल।
1: बेटा मैं अपना प्रोग्राम सुन रहा हूँ, इसकी लाइव चल रहा है ना?
0: हाँ जी
1: हाँ ते इसके बाद मेरा गीत भी आएगा ना बेटा, है ना?
0: हाँ जी बताइए कौन सा सुनना चाहोगे?
1: बेटा बेटा गीत के बोल मैं बड़ा गुनगुना देता हूँ मैं। अब फिल्म तो मैं भूल गया, पुरानी फिल्म है।
0: हाँ जी गाना बताइए।
1: ओ मैं गीत बताता हूँ। कुछ कहता है जे सावन क्या कहता है, ये गीत है बेटा।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल बेटा, जो बाबा नाल जल्दी सत श्री अकाल बेटा।
0: सत श्री अकाल सर।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: नाम मेरा जेकी है।
1: कहाँ से बात करें?
0: मैं अन्नापुर सिटी कोलीपाड़ा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मेरा ये गाना है यार का सताया हुआ।
1: ये क्या?
0: हाँ ये यार का सताया हुआ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: साला दिल भी गया और लेवल भी। मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: यार का।
1: हाँ हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: दुबेस मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: कुड़ादा से।
1: हाँ से
2: कुड़ादा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: चांदी तेरा गली चला गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
0: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 998-34-1311.
1: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ. एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट.
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण. डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन. आज ही एडमिशन कराएं. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500. प्रवेश प्रक्रिया आरंभ. सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए.
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम है महेंद्र कुमार, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन.
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: जिंदगी की इधर दुल्हन बनोगे जिंदगी.

0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम सोहेल सैफी मैडम।
1: जी कहाँ से बात कर रहे हो?
0: ये राजीव कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, फिर जोड़ना था।

0: हेलो
1: बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बहारो मेरा जीवन भी संवारो।
0: तो कैसा सुना रहे हैं आपको, सरप्राइज करिएगा ना।
1: धन्यवाद मेरी बहन
0: जी। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: श्रेया शर्मा,
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सैनिक नगर, गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: कुएं ऊपर आके आग लगा रखी।
2: कौन? कुएं ऊपर
1: आके आग लगा रखी।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडी डिया से।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
5: का नाम बताओ?
6: हेलो,
5: हाँ जी,
6: हेलो,
5: मैं आपका
6: कहाँ से बात कर रही हो?
5: लाल चौक से।
6: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: रूट्स।
6: रूट्स?
5: हाँ।
6: ओके मैम, तुम्हारे

0: काटनी से परों
1: की। हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रोहित।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: आदर्श नगर गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: यूटीपी तू और तेरा।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम अक्षत है, मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: क्या बोल रहे हो
3: सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाने को बोल है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है।
3: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरे संग यारा।

0: नमस्कार जी, नमस्कार मैडम।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: रतन लाल बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी के पास से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सुना दो मैडम। चंडोले मेरा मन बोले, मेरे दिल का गया करार।
1: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अशोक कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बापू सॉन्ग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।
2: चढ़ांगे तेरी ये माटी का मैं हूँ, देखता रहिए।

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: हाँ जी ये हो गए गैंगड़े जो मैं तरह छपती हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: राजा और रंग से वो फिरकी वाली तो कल फिर आना।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:28 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: क्या नाम है सर?
1: रविंदर मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं सवाई माधोपुर से बात कर रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: छोरा था सीधा साधा।
0: ओके

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज हमने सुना है फिल्म हम शक्ल का गाना है, काहे को बोलाया मुझे बाद में।
0: ओके सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रितेश मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बैरण।
0: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा महेश शर्मा नाम है। मैं जाना चाहता हूँ आपसे, डेडिकेट करना चाहता हूँ किसी के।
0: क्या सर?
1: मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड को।
0: आज भी बताइए सर।
1: मैम मूवी का नाम है रोटी कपड़ा मकान, मैं ना भूलूंगा।
0: गाने के बोले मैं ना भूलूंगा।
1: हाँ
0: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात करूँ?
0: सिंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरों में बंधन है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका सर?
0: नाम तो बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: कान से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरे टप टप पड़ा पसीना।
1: कौन सा?
0: मेरे टप टप पड़ा पसीना।
1: गाने के बोले क्या सर?
0: हाँ, आए गर्मी है ना। मैं

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:55 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

हर चीज के पीछे एक ही रीजन, क्या? फोन। ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएसटी 9.6। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे चलते चलते आपके पैरों में मोच आ जाए, चाहे आप साइकिल से गिर जाओ, चाहे आपसे जिम छूट जाए, चाहे आपका बस छूट जाए, कुछ भी हो, मम्मी एक ही रीजन देती है कि ये तो फोन चलाने की वजह से ही हुआ है। और ऐसी रीजनिंग आज के जमाने से नहीं है, हजारों साल पहले जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, तब चाहे इंसान को कुछ भी जहर लग जाए, चाहे वो सांप ने काटा हो, चाहे वो खाने में मिल जाए, उस जमाने में लोग सिर्फ एक ही चीज यूज करते थे एज ए जहर का इलाज, और वो था नींबू यानी लेमन। पर फिलहाल आपके कानों का इलाज गाने। तभी मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ बैक टू बैक अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कई बार इतिहास की चीजें जानने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार क्यों जाना मैंने ये, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एक जमाने में लोग केचप यानी टमेटो सॉस केचप को बेचते थे एज ए मेडिसिन, दवाई के रूप में बिकता था केचप। हाय हाय हाय हाय, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके कानों से खून निकल रहा हो, तो फिर रुक जाओ, मैं आपके कानों का इलाज करता हूँ। बैक टू बैक कुछ अमेजिंग गाने आपके लिए प्ले करने वाला हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे,
2: गंगापुर सिटी की धरती पर। रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।

देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन अगर कोई भी है, तो फिर ये खबर आपके लिए। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और टिल डेट 2024 चालू हो चुका है। और कौन सी खबर है भैया? हमारे बगल में, पड़ोस में जो यूएस है, यूएस का प्रेसिडेंट आज तक जो भी बना है, वो कभी भी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे नहीं थे। यानी किसी का बड़ा भाई था, किसी का छोटा, किसी की बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन। अगर आप यूएस जाके वहां के प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो, तो फिर आज का शो मेरा यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो बैक टू बैक अमेजिंग कुछ गाने आपके लिए प्ले करके जा रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दिन में पहली बार मुलाकात। देखो, किसी शख्स को अगर हम बचपन से भी जानते हैं और उसे हम दिन में पहली बार मिल रहे हैं, तो या तो हम उसके पैर छूते हैं, या फिर उनसे हाथ मिलाते हैं, या फिर उनसे गले मिलते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया फिजिकली पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपसे दिल मिलाना चाहता हूँ। और दिल कैसे मिलेंगे? सुर के साथ, ताल के साथ, लय के साथ और शानदार गानों के साथ। तभी आपके लिए मैं प्ले करने वाला हूँ बैक टू बैक चार गाने ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मेरी बात ध्यान से सुनो कि शब्दों का जो वजन होता है वो हमारे ना बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पे भी लिखा ही होता है वेलकम वेलकम वेलकम, तभी मेरा वेलकम करो भैया, क्योंकि आज का दिन आपका सुनहरा तभी जाएगा जब आप मेरे साथ अभी अगले एक घंटे तक जुड़े रहोगे और अमेजिंग गाने सुनोगे, अमेजिंग बातें सुनोगे। और गंगापुर सिटी के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा, फिलहाल आपके लिए कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ। कहीं मत जाना, सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: नॉक।
1: हेलो हेलो, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, आप ध्यान से गाने सुन रहे थे तो मेरे को लगा कि शायद आप ध्यान से मेरे दो लाइंस भी सुन ही लोगे। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस और पेश करता हूँ आपके खिदमत में नजरों से जुदा हुआ ना, नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, ना नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, यू अलविदा हुआ भी तो क्या अलविदा हुआ, हुआ नहीं हुआ कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं बन रहा, बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अलविदा कह के मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कहाँ? रेडियो डी ए सी 89.6 पे।
2: गंगापुर सिटी की धरती, रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
3: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

और दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे नहे तराने कार्यक्रम, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: पत कभी कभी।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

बता दूं? वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: मन को। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: दोस्तों, वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, भी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम पुली विसरी यादें। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।
2: गानों वाला की पैड फोन धमाका।

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:39 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारे स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। दोस्तों हमारे स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। पुनः प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

तो वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता हूँ।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बादल सॉन्ग लगा देना, हरियाणवी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: अच्छे से सुना रहे हैं आपकी फरमाइश
1: से बातचीत कर रहा हूँ
0: जी। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये नई फिल्म है अलवेला
0: जी,
1: इसका गाना है शर से सरक गई तेरी चुनरी।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर, गाना रेडियो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय।

0: थैंक यू,
1: टेक केयर।
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मैडम।
2: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
3: जी मैम, नाम सोहन सैफी।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी, गाजीपुर।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं पलक तक चल साथ मेरे।
2: कौन सा सर?
3: पलक तक चल साथ मेरे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मीनाक्षी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हरियाणवी सॉन्ग नहीं है वो, नया आया है काला चश्मा।
1: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी सबने।

0: कुछ नहीं कर रहे दीदी, गर्मी में उबल रहे हैं।
1: बहुत धूप पड़ रही है दीदी, मैंने भी हवाल देखा था, इतनी गर्मी बहुत गर्मी है।
0: अरे बहना मेरी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है
1: जी। क्या कर रहे हो आप इस टाइम?
0: कुछ नहीं कर रही, थोड़ा सा ब्लाउज सिल रही।
1: हाँ, अपना घर का काम ही कर लेते हैं ना।
0: हाँ
1: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे दीदी आज?
0: गाना सुनना है भूल भुलैया तेरी अखियां सैयां रास्ता भूल गई मैं घर जाऊं कैसे।
1: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गाना पूछी थी लखनऊ की बगीची।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुम अगर साथ देने का वादा करो।
1: मैं समझ में नहीं आ रहा गाना।
0: तुम अगर साथ देने का वादा करो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: नाम तुम राम मीना, ग्राम पिलुखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है गजल और गाने के बोल है नगमा और शेर की सौगात किसे पेश करूं।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियस में कॉल।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: तो
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: मेरा नाम सौरभ मीणा।
0: कौन से बात कर
1: रहे?
0: कौन से गाने सुनना चाहोगे?
1: तेरा नाम ले लिया रे सांस पे।
0: तेरा नाम ले लिया रे सांस पे।
1: तेरा नाम मेरी हर एक सांस पे।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कीर्ति।
0: कहाँ से बात कर रहे हो कीर्ति जी?
1: सिंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फॉर्चुनर।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: कब से।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: तन्नू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो तन्नू?
2: जमलापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: दुपट्टा तेरा नौ रंगीदा।
1: ओके मैम, सुना रही हूँ।

0: दुपट्टा तेरा।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: लव सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: लव मैरिज करांगे कोर्ट में।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:11 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास है अक्षरा शर्मा जी की। अक्षरा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: Your voice, I am singing sound, soup sound.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ आरजे खुशी, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग अपनी जो बड़ी खुशियां हैं उनको मनाने से भी कतराते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन कोई ना कोई खास तिथि होती है, और अगर हम क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं हर दिन एक त्योहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए माना हर दिन तो हम लोग नहीं मना सकते, लेकिन महीने में एक या दो दिन तो ऐसे जरूर आते हैं जब हम सब लोग मिलकर साथ बैठकर किसी एक त्योहार को मना सकते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड होगी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में बहाना होना चाहिए लोगों को खिलाने का, उन्हें अपने घर बुलाने का और बहुत सारे मजे करने का। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें ना हम लोगों ने कोरोना काल में सीखी है। मैं हूँ आरजे खुशी। कोई लोग बोलने लगे कि हल्दी का दूध पियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगातार दवाई लेते रहो, कुछ लोगों ने कहा लगातार आप च्यवनप्राश खाते रहो, तो कुछ लोग बोले कि आंवला रोज खाते रहो। लेकिन आप जानते हो कि एकदम से कुछ खा लेने से आपकी बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली कुछ अच्छा खाते रहोगे ना, तब बात है। अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी जो कलरफुल सब्जियां आपको दिखती है ना, इतने रंग बिरंगे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, उनको खरीद कर खाना शुरू कर दीजिए। जितने रंग की सब्जियां आप खरीदेंगे, उतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। और अगर आप रेगुलर वे में ये करेंगे तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि आपको बाहर से किसी चीज को कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हमारा दिमाग ना कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत वीडियो देखने की आदत उसको पड़ जाती है और लगातार गलत वीडियो देखता रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड की वीडियो देखने शुरू करते हैं और एक के बाद एक वही वीडियो देखते रहेंगे, वही वीडियो उनके टाइमलाइन में आ जाएंगे। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। एक तो अगर हमने एक ही तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दिया तो वो ही हमारी प्रोफाइल पे बार बार आएगा। इसलिए अगर कोई फालतू का कंटेंट आपकी प्रोफाइल में आए ना, उसे देखिए मत, उसे स्किप कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उस यंत्र से मिल पाए जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा हम लोग इसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो क्यों ना इसे ही पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए। सोच कर देखिए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो
2: डीएस।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धरती
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

दोस्तों फिलहाल आप टून कर रहे हैं T9.6 रेडियो ओडियस कंकापुर सिटी का धड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मेरा। दोस्तों आज रात्रि का कार्यक्रम यही समापन करते हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं और प्रातः सुबह 5:55 पर